Biker Radio. साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाए तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410। साफो ट्रेवल, at all protected.

अभिखम विचार गावे को साज करे तनखे गावे को जी लय फिर दे गावे को जापे दिसे दूर गावे को वेखे हादरा दूर।

मैं विसर ना जाए जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवा खंडा विच जानी है नाल चले सब कोए चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जगले जे तिस नदर ना आवे।

मन्ने सगल पवन की सुध, मन्ने मोह चोटा ना खाए, मन्ने जम के साथ ना जाए, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्ने मार्ग ठाक ना पाए, मन्ने पत्स्यों प्रगट जाए, मन्ने मग ना चले पंथ, मन्ने धर्म सेती सनबंध।

पाठ असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोहन लिवलाए तार, कुदरत कौन कहा।

असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच्छ मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार।

तेरे भगत रसाले। होर के ते गावन से मैं चितनावन, नानक क्या विचारे। सोई सोई सदा सच साहिब, साचा साची नाई है भी होसी।

ना जोर, जोर ना जीवन मरण ना जोर, जोर ना राजमाल मंसोर, जोर ना सुरती ज्ञान विचार, जोर ना जुगती छुटै संसार, जिस हाथ जोर कर वेखे सोए, नानक उत्तम नीच ना कोए, राती रुती छित्ती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथे सोन पंच परवान।

0: रेडियो लेस्टर तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए. जेज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बॉलीवुड लेजेंड लाइव इन कॉन्सर्ट फीचरिंग बॉलीवुड एक्टर संजय कपूर, प्लेबैक सिंगर अमन त्रिका और फीमेल सिंगर मयूरी पटालिया. Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 PM, show starts 7 PM. Tickets, book kare, demontforthall.co.uk
1: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280655. Exclusive radio partner, Leica Radio. Start.

0: book now. Visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala. Heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
2: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक है? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं। एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। शुरुआती सैलरी है £39,500, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स। दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स।
3: खाखरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
4: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
3: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स, अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
5: ये बवाल बॉस के ऊपर जाएगा भाई।
6: पवन जी, मैंने सुना है आप दोनों के रिलेशंस अच्छे नहीं है।
7: आप सीधे सीधे आरोप लगा रही हो।
8: भाई निकाल माइक।
9: भाई भाई के प्यार कितना सुंदर।
10: The brand new reality TV show Bhojpuri Pawal, Monday to Sunday at 10 PM on Colors TV.
11: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
12: If I'm going out on my new paddleboard, the last thing I'm taking is my phone, right? Buoyancy aid, fine. But mobile? My whole life's on that phone. Why would I risk losing it in the... Coast Guard, help!
13: Okay, help's on its way.
14: Grab my hand!
12: Phone. In a waterproof pouch. It's the first thing I pack now.
15: In an emergency at the coast, call 999 and ask for the Coast Guard. And please, respect the water.
16: If you see somebody showing any of the signs of a stroke, you don't have to think about it, you just dial 999. Use the FAST test. F, face, has their face fallen on one side? Can they smile? A, arms, can they raise both arms and keep them there? S, speech, is their speech slurred? T, time, time to call 999 if you see any one of these signs. Act fast, make the call, dial 999.
17: Uncle G spent £40,000 on rent, but zero online. His shop is empty. His nephew's TikTok is booming. Be seen. Visit HeartyHanks.com. Hearty Hanks. Outdated is out of business. Visit HeartyHanks.com today.
11: Cool music for a super hot summertime. On the Leica Radio Network. Your wake-up call. This is Car-

0: Mabster Pani Puri or Pani Puri Ka Pani.
1: All Mabster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर. ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी. सब कुछ फ्रेश और टेस्टी. लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए. तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS. कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं. क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड विमली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर लेस्टर में.
3: ये है लाइका गो.

0: पापा को गुलाब जामुन बहुत पसंद है।
1: ऑर्डर ऑनलाइन एट pujasweets.com फ्रॉम बर्फी लड्डू गुलाब जामुन टू समोसा एंड गाठिया फ्रॉम केटरिंग स्टार्टर्स टू डिजर्ट पूजा स्वीट्स एंड सेवरीज।
2: अभी कॉल कीजिए 0116-202-1222 और विजिट मेल्टन रोड LE4 5EA।
1: पूजा स्वीट्स एंड सेवरीज
3: Like a Radio Network broadcasting across the UK with Asian stations. Like a Gold, London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB digital radio par. Alexa pe bolo play Like a Gold aur online suno likeagold.com pe. Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

ഗുഡ് മോർണിംഗ്. സ്വാഗത് ഹെ സംഗീത് പ്രേമിയോ കാ മനോരഞ്ജൻ കി മെഹഫിൽ മേ. मंगलवार वर्ष 2026 के अगस्त महीने की 4 तारीख और वक्त हो गया भाई हमारी आपकी मुलाकात का. 10:05 हुआ चाहते हैं ब्रिटिश घड़ियों में. आपके यहाँ क्या बजा है? अरे आपके यहाँ रेडियो बजा है भाई, मनोरंजन प्रोग्राम सजा है. तो आप जुड़ जाइए अपने इस कार्यक्रम के साथ. माय नेम इज रवि शर्मा और मैं दोपहर बाद 1 बजे तक आपकी सेवा में हाजिर हूँ ब्रिटिश समय के अनुसार.

0: जाता है दिल, फिर नहीं रहती किसी चीज की तलब, फिर नहीं रहती किसी शय की तलब, जब किसी के दिल से मिल जाता है दिल।
1: Like a radio. Let's return to the biggest hits back to back. This is Like a Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Like a Radio mobile app and listen wherever you are in the world. Back to back hits across the Like a Radio network.
0: उम्र गुजरी है तुम ही को पूजते, कौन कहता है बदल जाता है दिल, फिर नहीं रहती किसी शय की तलब, जब किसी के दिल से मिल जाता है दिल,
2: दिल से दिल टकरा,
0: जब किसी के दिल से मिल जाता है।

सेलिब्रेशन इज ऑन। किसका जन्मदिन मनाया जा रहा है भाई, दुनिया में कौन आ रहा है? आ चुका है, छा चुका है, और भाई बहुत सारे लोगों का दिल बहलाकर दुनिया से जा चुका है।

0: महफिल के ऐसा पूरी दुनिया सजी, उसकी आवाज जब गूंजी। कार्यक्रम शुरू करते हो भाई, ये आवाज हमारे कंप्यूटर ने सुनवा दी, लेकिन बता दूं आपको कि आज जन्मदिन है इनका, आभास कुमार गांगुली। सुना है नाम, आभास कुमार गांगुली वॉज बोर्न ऑन 4th of August in 1929। कार्यक्रम शुरू किया तो भाई पहला गीत तो चुपके चुपके जब भी तेरी जब दिल से दिल टकराता है रफी साहब की आवाज में था, लेकिन दूसरा गीत आभास कुमार गांगुली यानी किशोर कुमार खंडवा वाले लता जी के साथ ये गीत गा रहे हैं।
1: मैं तुझ पे सदके कर दूं अपनी जा, महफिल का सजदी।
0: 4 अगस्त 1929 में जन्मे थे। आज वैसे भाई बाली भाई तो फिल्मी दुनिया के सितारों की जन्मदिन पर उनकी पूरी कहानी जुटा के लाते हैं, लेकिन एक आध गीत हम भी सुनवाएंगे और थोड़ा बहुत जो है मसाला हम भी आप तक पहुँचाएंगे। किशोर कुमार एक ऐसी आवाज, क्या बताएं साहब, ही वॉन 8 फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के और 28 नॉमिनेशंस एंड होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर विनिंग एंड नॉमिनेटिंग द मोस्ट फिल्म फेयर अवार्ड्स इन दैट कैटेगरी। याद करेंगे किशोर कुमार के कई दीवाने हैं, एक तो हमारे दोस्त थे भाई, अब दुनिया में नहीं है, उनका भी नाम किशोर था और हम केशु कहते थे, मॉरिशस के वो भाई हमारे लिसनर थे, लेकिन किशोर कुमार के इस कदर दीवाने थे कि जब उनकी फरमाइश आती तो वो किशोर कुमार का ही गीत मांगते थे। आज दुनिया में होते तो अपना जन्मदिन मना रहे होते, लेकिन 13 अक्टूबर 1987 में अचानक निकल लिए किशोरदा। तो साहब आज है 4 अगस्त 2026 मंगलवार का दिन, और बहनों भाइयों आज का मनोरंजन जन्मदिन मनाने वालों के नाम समर्पित करें तो सबसे पहला नाम होगा आभास कुमार गांगुली, यानी जो किशोर कुमार नाम से गायक कलाकारों की भाई श्रेणी में प्रसिद्ध हुए। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू।
2: Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India UK. आज फिर बता रहे हैं आपको कि भाई रेट अच्छा चल रहा है, पैसे अपनों को भिजवाना चाहे तो मौके का फायदा उठाइए। क्या रेट चल रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके दे रहे हैं 1 पाउंड के बदले 127.65 रुपीस मैक्सिमम। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। टीस एंड सीस अप्लाई। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल updates for the Midlands at breakfast and drive.
3: ये है लाइका रेडियो।
4: This part of the show is brought to you by 108 Base Hospital Uri. Starts 15th of August every Saturday and Sunday at 7 PM on Colors TV.
5: I hope me janena hum log waqt par pahunche.
6: Lester Miller is back.
7: And the stage is about to explode. Confirmed artist
6: Shin DCS. Expect classic vibes, live energy, and a proper celebration at the Abbey Park.
7: Hosted by the team of Lyco Radio Network, Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester.
6: An event by 101 Circle in association with Leicester City Council,
7: Arts Council England. You know how UK weather can do full drama with our hair. One day frizz, one day flat. That's why I switched to Siddhayu Hair Oil. It's proper premium light, non-sticky and made with real Ayurvedic herbs. Mum loves it because it's traditional. I love it because it actually works. Stronger roots, less hair foil and that healthy shine you notice straight away from the house of Baidyanath with over 100 years of Ayurvedic legacy.
8: Siddhayu, now available in Falcon Cash and Carry, Leicester and Nottingham.
9: Are you a nurse, physiotherapist, occupational therapist or paramedic? Would you like to work office hours, enjoying every weekend off and no night shifts? At Capita, we are seeking hybrid clinical assessors based at various locations across the Midlands, with remote working possible for those who live outside the area. We offer a starting salary of £39,500, comprehensive training and ongoing CPD, plus a host of other benefits. Interested? Search Capita Health Assessment Jobs today.

सफर जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। भाई संगीत के सफर में मेरे जो हम सफर थे ना, सबसे पहले छोटी उम्र में मेरे बड़े भाई थे और वो ऐसे संगीत प्रेमी थे। दरअसल उन्हें जाना चाहिए था इस फील्ड में, लेकिन वो तो सैनिक बन गए और इंडियन नेवी ज्वाइन करके वो तो भाई एक फौजी के रूप में उन्होंने जिंदगी जी। फिर वो मर्चेंट नेवी में चले गए। लेकिन बड़े भाई से मैंने संगीत की कदर करना सीखा। ये गीत जब बज रहा होता था, रास्ते में एक जगह थी जहाँ पर गीत जो है वो लाउड स्पीकर में बजते थे, वो मैदान था और वहाँ पर कोई ना कोई फंक्शन चलता रहता था, पर ये गीत कई बार दोहराया जाता, बजाया जाता और भैया कहते थोड़ा रुक जाओ, ये गीत पूरा सुन के चलेंगे। और साहब किशोर कुमार का ये गीत खत्म होता तो फिर कोई और गीत चल पड़ता किशोरदा की आवाज में, और वो कुछ गीत तो मुझे जबानी याद हो गए। भाई साहब वहां से मूव होने के लिए तैयार ही नहीं होते थे, अभी चलेंगे। मैं उन्हें याद दिलाता कि घर पे हम लेट हो रहे हैं, मम्मी पापा जो है, माता जी पिताजी नाराज होंगे, गुस्सा करेंगे, स्कूल छूटे हुए इतनी देर हो गई है। भाई बस्ता लटकाए वहां खड़े होकर के हम दरवाजे पर जहां ये गीत बजते थे सुनते और बार बार सुनते, लगातार सुनते, और किशोर कुमार हमारे दिल में बसते चले जाते, गीत याद हो जाते।

0: जीवन के प्यार के।
1: भाई किशोर कुमार की तरह जो ना, जैसे किशोर तो हमसे बिछड़ गए लेकिन आवाज उनकी जिंदा है, बड़े भाई की यादें भी जिंदा हैं। अभी 2 महीने पहले वो भी इस दुनिया से विदा हो गए। हमारी उम्र में सिर्फ 2 साल का ही फर्क था, लेकिन संगीत के प्रति उनका समर्पण और किशोरदा के और रफी साहब के तो बुरी तरह दीवाने थे बड़े भैया। विष्णु नाम था उनका। दिल में बसे हैं भाई भी, दिल में बसे हैं किशोरदा और रफी साहब भी, और संगीत का ये पूरा साम्राज्य। तो साहब आज किशोरदा का जन्मदिन है, उन्हें याद करेंगे। मैंने जैसा बताया कि भाई इतना विशाल खजाना है गीतों का उनकी आवाजों में कि सारे गीत तो एक महीने में क्या, एक साल में क्या, मैं कहता हूँ सदियों तक जो है नहीं सुनवाए जा सकते। इतने सारे प्यारे प्यारे गीत हैं किशोरदा की आवाज में। खैर ये गीत आपको कैसा लगा?
2: Brought to you by Derry Valley.
3: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
4: Manoranjan with Ravi Sharma.
5: Like a radio.
1: तो बहनों भाइयों अब समय हो गया है 10:30 यहां ब्रिटिश घड़ियों में, और ये वक्त है समाचारों का। लाइका रेडियो नेटवर्क, अब आप रवि शर्मा से आज के प्रमुख समाचार सुनिए। एक बार फिर भाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना वो क्या कहते हैं बयान दोहराया है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ बातचीत फिलहाल जारी है, और उन्होंने कहा कि ईरान के लिए एक अच्छे समझौते पर दस्तखत करने का ये आखिरी मौका है। व्हाइट हाउस में प्रेस से बातचीत के दौरान ट्रंप ने दावा किया कि बातचीत ईरान की रिक्वेस्ट पर शुरू हुई है। अमेरिकी प्रेसिडेंट ने ईरान की लीडरशिप पर दोहरा रवैया अपनाने का इल्जाम लगाया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर जारी एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि ईरानी लीडरशिप बातचीत के लिए बैठक की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन सार्वजनिक रूप से पब्लिकली ये दावा किया जाता है कि दोनों देशों के बीच कोई बातचीत नहीं हो रही। अमेरिकी प्रेसिडेंट ने दावा किया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पहले से ही अमेरिकी नेवी के पूर्ण कंट्रोल में है और उनकी इजाजत के बिना ईरान तक कुछ भी नहीं पहुंच सकता, और ये हालत तब तक बनी रहेगी जब तक कोई समझौता नहीं हो जाता या फिर ईरान सरेंडर नहीं कर देता। बल या तो समझौते पर दस्तखत करे या सरेंडर करे, ये भाई शर्त है डोनाल्ड ट्रंप की। इस खबर के अलावा पाकिस्तान ने पेट्रोलियम डिवीजन ने 4 अगस्त से लागू होने वाली पेट्रोल और डीजल की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पाकिस्तान सरकार ने दोनों की कीमतों में कटौती का ऐलान किया है। पेट्रोलियम डिवीजन की ओर से जारी एक सूचना के अनुसार पेट्रोल की प्राइसेस में 4.08 रुपए प्रति लीटर की कमी की गई है। कटौती के बाद पेट्रोल की नई प्राइसेस 331.95 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर तय की गई है। वहीं हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 2.45 रुपए पर लीटर की कमी की गई है, और इसके बाद डीजल की नई प्राइसेस 389.93 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर हो गई हैं। भारत से आने वाली खबरों में 3 विधानसभा सीटों पर बाई इलेक्शन हुए थे, और भाई इनमें भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर हार गई है जबकि 1 सीट पर उसने जीत दर्ज की है। अब 2 सीटों पर मिली हार के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने इलेक्शन के रिजल्ट्स पर गंभीरता से आत्ममंथन करने की बात कही है। कल घोषित हुए बाई इलेक्शन के नतीजों के बाद नितिन नवीन ने देर रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रिएक्ट करते हुए लिखा कि 3 विधानसभा बाई इलेक्शंस में आए जनादेश को हम स्वीकार करते हैं। आपको बता दें कि जन स्वराज पार्टी के फाउंडर प्रशांत किशोर ने बांकीपुर विधानसभा सीट के बाई इलेक्शन में जीत दर्ज की है। इस पर उनकी पत्नी डॉक्टर जाह्नवी दास ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि हम सभी बहुत खुश हैं, और ये सीट बहुत मुश्किल थी क्योंकि यहाँ तो पिछले कई सालों से बीजेपी का दबदबा था, वो जीतते आ रहे थे। ये जीत हमारे लिए इसलिए भी खास है और इससे हमारी खुशी बढ़ गई है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मोहन यादव ने दतिया विधानसभा बाई इलेक्शन में कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह की जीत पर रिएक्ट किया है। मोहन यादव ने कहा कि ये कांग्रेस की सीट थी जो कांग्रेस के पास ही है। ये बात अलग है कि पिछले विधानसभा चुनाव से भी हमने 1700 वोट ज्यादा पाए हैं। ये दूसरी सीट थी जो बीजेपी हार गई है, एक सीट उन्होंने जीती है, उनके हिस्से में आई है। 3 सीटों पर बाई इलेक्शन हुए थे। व्हाट्सएप ने कल 3 अगस्त को कथित तौर पर भारत समेत कई देशों के कुछ यूजर्स के अकाउंट्स को 24 घंटे तक रिव्यू के लिए रिकॉग्नाइज किया है। इस दौरान प्रभावित यूजर्स के लिए ऐप की सभी सुविधाएं टेम्परेरीली रूप से बंद रही, जिसके बाद कई लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी चिंता जाहिर की। अमेरिका के 25 राज्यों ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नए टैरिफ के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। राज्यों ने 60 व्यापारिक साझेदार मुल्कों से आने वाले सामान पर लगाए गए 10-12.5% टैरिफ को चैलेंज किया है। उनका कहना है कि यह फैसला मनमाना है, तर्कहीन है और कानून के खिलाफ है। क्रिकेटर रोहित शर्मा ने फॉर्मर फील्डिंग कोच टी दिलीप के 5 साल का कार्यकाल खत्म होने पर सोशल मीडिया पर उन्हें सम्मान दिया है, एक संदेश साझा किया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर दिलीप के साथ अपनी तस्वीर साझा करते हुए उन्हें लेजेंड बताया और पर्दे के पीछे टीम के लिए उनकी मेहनत की जमकर तारीफ की है। डीएमके नेता और तमिलनाडु विधानसभा में अपोजिशन लीडर उदयनिधि स्टालिन को आज चेन्नई स्थित उनके घर से पुलिस ले गई। उन पर एक्ट्रेस त्रिशना कृष्णन के खिलाफ कथित तौर पर सो कॉल्ड अपमानजनक इंसल्टिंग टिप्पणी करने के इल्जाम में एक FIR दर्ज हुई है। और उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी CM केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि मदरसा अघोषित तौर पर आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री है। भाई ये विवादित बयान है जिस पर वहां पर काफी हंगामा हो गया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये असलियत है कि भारत और बाहरी दुनिया के किसी भी हिस्से में आतंकी हमले मदरसों में दी जाने वाली तालीम का ही परिणाम है। उन्होंने कहा कि मदरसा चाहे बांग्लादेश का हो, पाकिस्तान का हो या भारत का हो, ये अघोषित तौर पर आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री है। उन्होंने कहा कि मैं ये बात पहले भी कह चुका हूं और आज फिर दोहराता हूं कि जो कोई भी मदरसा की शिक्षा लेता है, जो कोई भी स्टूडेंट, वो भारत माता की जय नहीं बोलता, वो वंदे मातरम नहीं गाता और उसकी सोच एकदम धीरे धीरे आतंकवादियों जैसी होती चली जाती है। ईरान के प्रेसिडेंट के इस्तीफे की अटकलें सुनाई पड़ रही हैं। ईरानी मीडिया ने प्रेसिडेंट मसूद पेजिशकान का एक वीडियो बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि वो इस्तीफा नहीं देने जा रहे हैं, वे अपने पद पर बने रहेंगे। दरअसल इससे पहले ईरानी मीडिया और सोशल मीडिया पर खमनई परिवार के करीबी मौलवी मोहम्मद बगर खराजी के एक बयान को साझा किया गया था और उसमें दावा किया गया था कि मुज्तबा खमनई ने कहा है कि अगर पेजिशकान एक बार फिर इस्तीफा देते हैं तो हम इस बार उनका इस्तीफा स्वीकार कर लेंगे, कबूल कर लेंगे। और भारत की केंद्र सरकार ने दावा किया है कि 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 फरार अपराधियों को, क्रिमिनल्स को वापस भारत लाया गया है। सरकार ने दावा किया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में भारत ने भगोड़े क्रिमिनल्स से निपटने के लिए खुफिया जानकारी और तकनीक पर आधारित इंटीग्रेटेड सिस्टम विकसित किया है, डेवलप किया है। मोदी सरकार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि पिछली सरकारों में भगोड़े क्रिमिनल्स को वापस लाने की पॉलिटिकल इच्छा शक्ति नहीं थी, जबकि मोदी सरकार ने इसे नेशनल प्रायोरिटी बताया है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं।
4: दिस इज Laika रेडियो टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।
1: लौट आइए संगीत की ओर।

0: ਲਾਈਕਾ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬੀ, ਲਾਈਕਾ ਰੇਡੀਓ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਤੇ, ਲਾਈਕਾ ਰੇਡੀਓ .com ਤੇ ਅਲੈਕਸਾ ਪਲੇ ਲਾਈਕਾ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀ. Laika Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LaikaGold.com.
1: Geet ke saath saath baat khelon ki kare to bhai, ek aisa khel hai jo ओलंपिक में या कम से कम कॉमनवेल्थ खेलों में शामिल होना चाहिए, जिसे कहते हैं आंख मिचोली. आंख मिचोली अगर भाई ये कंपटीशन में शामिल हो तो चैंपियन हम ही बनने वाले हैं.

0: और भाई ये बात करें आज कॉमनवेल्थ गेम्स को भारत के लोग, ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स जो चल रहे थे 2026 के, ये गेम्स भाई अब समाप्त हो चुके हैं, कल समापन हो गया इनका। भारत ने इन खेलों में 13 गोल्ड के साथ 39 मेडल जीते और पदक तालिका में चौथे पायदान पर रहा भारत। उसने 17 सिल्वर 9 ब्रॉन्ज मेडल पर भी कब्जा किया और इन खेलों में ऑस्ट्रेलिया 70 गोल्ड के साथ शीर्ष पर रहा। भारत का सबसे अच्छा प्रदर्शन मुक्केबाजी में रहा, उसने मुक्केबाजी में 7 गोल्ड और 3 सिल्वर मेडल के साथ कुल 10 मेडल जीते। अब बता दें भाई कल ये समापन हुआ तो उसमें भारतीय कलाकारों ने जमकर प्रदर्शन किया, क्योंकि अगले कॉमनवेल्थ गेम्स भारत में होने वाले हैं और भाई इंतजार रहेगा, अहमदाबाद में इन खेलों का तैयारियां चल रही
1: है। Like our radio. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: And let me tell you the rates LemFi ke note kijiye, 1 pound ke badle they are giving in Indian currency 128.19 rupees. Pakistani 373.75. Sri Lankan rupee 451.62. Bangladeshi take 166.24 and Afghani 88.041.
1: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Manoranjan with Ravi Sharma. Leica Radio.
1: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: नोट कीजिए, द गोल्ड इज ट्रेडिंग एट द रेट ऑफ 96.96 पाउंड्स पर ग्राम।
1: ROM Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit ROM Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester or call 0116 266 4278. Leica Radio. This part of the show is brought to you by 108 Base Hospital Uri. Starts 15th of August every Saturday and Sunday at 7 PM on Colors TV.
3: I hope Major Naina, we log waqt par pahunche.
4: List up, stock up and save at Falcon Cash and Carry. Falcon Chakki Atta 10 kg, 7.49. Lela Medium Atta 10 kg, just 3.99. Disha Extra Long Basmati Rice 20 kg, 24.99. Hira Butter Ghee 2 kg, 10.99. And Falcon Paneer Box 8.99. Get Falcon Kesar Mango Pulp for 1.49. Tata Salt for 69p. Kisan Hot and Spicy Sauce for 99p. And 2 Falcon Red Lentils 1.5 kg for 3.99. Mido Yogurt 10 kg, 8.99. Karela or Long Dudi 2.99 per kilo. Offers valid from 6th July to 2nd August at Falcon Cash and Carry, 82A Syston Street West, Leicester, LE1 2JU, and 2A Rollout Sale, Leicester, LE5 4UN.
5: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट रागासन.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।

स्वागत है आपका मनोरंजन प्रोग्राम के दूसरे दौर में। अगर आपने रेडियो अभी सुनना शुरू किया है तो भाई बता दूं कि मनोरंजन कार्यक्रम 10 बजे शुरू होता है और आपने एक घंटे का कार्यक्रम मिस कर दिया है अगर आपने अब सुनना शुरू किया है तो। 10 से 1 बजे के बीच मैं रवि शर्मा आपकी सेवा में हाजिर रहता हूं और 11 बजे की खबरों के बाद पेश करता हूं थॉट फॉर द डे, आज का विचार। और आज के इस विचार में हम आलेख शामिल कर रहे हैं अजय ठाकुर जी का, जिन्होंने एक बड़ा मीठा सा निमंत्रण भी आप सबके लिए भेजा है। भाई कहते हैं भारतीय उच्चायोग और इंडियन डायस्पोरा जो यहाँ यूके में यूरोप में बसे हैं एक जबरदस्त आयोजन कर रहे हैं। नोट कर लीजिए, भारतीय स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को होता है, लेकिन भाई ये कहते हैं कि यहाँ सारी कम्युनिटीज मिलकर के और हाई कमीशन भी साथ में सहयोग दे करके स्वतंत्रता दिवस का आयोजन कर रहे हैं 22 अगस्त को, जैसा कि पिछले कई वर्षों से बड़े जबरदस्त ढंग से मनाया जाता है, हजारों की संख्या में लोग जमा होते हैं। तो ये आयोजन पिछले साल की तरह नवनेट सेंटर हेज प्रिंटिंग हाउस लेन में जो है, बहुत बड़ा वेन्यू है, वहां आयोजित किया जा रहा है और वहां भारतवंशी मिल करके अपना ये त्योहार एक मेले के रूप में, एक शानदार आयोजन के रूप में भाई मनाएंगे, जिसमें फ्री एंट्री, फ्री कार पार्किंग, फ्री एंटरटेनमेंट, देशभक्ति के गीत, फ्री फूड, यानी सब कुछ फ्री है क्योंकि आप ही का ये आयोजन है। तो वो कहते हैं सबको इनवाइट करना मत भूलिएगा। भारतवंशी दुनिया में जहां भी हैं बड़ी धूमधाम के साथ अपना यह स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं।

0: लेकिन एक और बड़े व्यक्तित्व का आज जन्म हुआ था और उनके साथ जुड़ी है एक बहुत ही गौरवमय कहानी। तो कौन है वो भाई? नाम है उनका उदय सिंह राणा। याद आ रहा है आपको? अरे साहब, बचपन में हमने ये कहानियां पढ़ी थी, अजय याद दिला रहे हैं। उदय सिंह राणा, अरे साहब राणा नहीं, उन्हें कहिए महाराणा। हाँ जी, महाराणा प्रताप के पूज्य पिताश्री। और भाई अगर उनके बचपन की ओर लौटें, महाराणा उदय सिंह 1522 में जन्मे थे। वो उदय सिंह जिन्हें बचाने के लिए उनकी धाय ने, उनकी आया ने, पन्ना धाय ने अपने बेटे का बलिदान दिया था। क्या गौरवमय गाथा है ये। यूं तो भाई राजस्थान की कहानी ने, राजस्थान की धरती ने, राजस्थान के इतिहास ने बहुत सारी कहानियां दी हैं, लेकिन ये गौरव गाथा जिसमें अपनी कोख से जाए अपने बच्चे का बलिदान देकर के महाराणा उदय सिंह का जीवन बचा करके पन्ना धाय ने इतिहास में अपनी जगह बनाई, ये घटना सुनिए। अगर पन्ना धाय ना होती तो उदय सिंह महाराणा नहीं होते, वो नहीं होते तो महाराणा प्रताप भी नहीं होते, उदय सिंह नहीं होते तो आज राजस्थान का ये विशाल नगर जो उदयपुर है वो भी नहीं होता, क्योंकि वो उदय सिंह राणा ने ही बसाया था। मेवाड़ के इतिहास की सबसे मार्मिक और त्यागपूर्ण कथा, पन्ना धाय के अद्वितीय बलिदान की कथा सुनिए। अजय जी का भेजा आलेख, अजय ठाकुर का आलेख, आज का चिंतन।
1: चिंतन चिंतन।
0: समय था 16वीं शताब्दी का, मेवाड़ की राजधानी थी चित्तौड़गढ़। महाराणा सांगा के पुत्रों में से एक थे कुंवर उदय सिंह, जो आगे चलकर के मेवाड़ के महाराणा बने और उदयपुर नगर के फाउंडर के रूप में भी प्रसिद्ध हुए। लेकिन उदय सिंह जब छोटे थे तब उनकी देखभाल की जिम्मेदारी पन्ना धाय के पास थी। पन्ना धाय जो केवल उनकी धाय मां नहीं थी, वे उन्हें अपने पुत्र के समान प्रेम करती थी। उनका अपना बेटा था, एक चंदन नाम था उसका। और उस समय बहन भाइयों मेवाड़ में सत्ता को लेकर एक स्ट्रगल चल रहा था। बनवीर ने महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर दी थी, कत्ल कर दिया था, और अब वो अपने रास्ते की सबसे बड़ी बाधा यानी रुकावट नन्हे उदय सिंह को भी खत्म करना चाहता था। एक रात की बात, पन्ना धाय को खबर मिली कि बनवीर तलवार लेकर बालक उदय सिंह का कत्ल करने के लिए आ रहा है। सोचिए, एक तरफ मेवाड़ का भविष्य और दूसरी तरफ थी पन्ना की अपनी औलाद चंदन। पन्ना धाय ने एक क्षण में यह फैसला ले लिया। उन्होंने बालक उदय सिंह को एक टोकरी में छुपाकर सिक्योर जगह पर, सुरक्षित स्थान पर रवाना कर दिया। अपने विश्वास पात्र सेवक के हाथ और फिर अपने सोते हुए बेटे चंदन को उठाकर उदय सिंह के बिस्तर पर सुला दिया और ऊपर वही चादर डाल दी जो उदय सिंह राणा ओढ़ते थे। कुछ ही क्षण बाद बनवीर तलवार लेकर कमरे में पहुंचा। उसने कड़क कर पूछा, कहां है उदय सिंह? पन्ना धाय ने बिस्तर की ओर इशारा कर दिया, जहां उनका अपना बेटा चादर में सोया हुआ था, चंदन। बनवीर ने बिना ये जाने कि बिस्तर पर कौन सो रहा है तलवार चला दी और पन्ना धाय अपनी आंखों के सामने अपने ही बेटे चंदन का बलिदान देखती रही। अपनी चीख को दबा लिया, आंसुओं को छुपा लिया। एक मां के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है? लेकिन पन्ना धाय को पता

कि अगर बनवीर को पता चल गया कि उदय सिंह बच गया है तो मेवाड़ की राजवंशीय परंपरा को यह खत्म कर देगा। इसके बाद पन्नाधाय बालक उदय सिंह को लेकर के सुरक्षित स्थान की ओर चली और आखिर में उन्हें कुंभलगढ़ में आश्रय मिल गया, शरण मिल गई। वहां उदय सिंह का सुरक्षित पालन पोषण हुआ। समय बीता, उदय बड़े हुए, उन्होंने अपने समर्थकों के साथ मेवाड़ का अधिकार फिर से प्राप्त किया और 1540 में बनवीर को पराजित करके वो मेवाड़ के महाराणा बने। महाराणा उदय सिंह आगे चलकर उन्हीं के पुत्र हुए महाराणा प्रताप। बहनों भाइयों, पन्नाधाय ने केवल एक राजकुमार की जान नहीं बचाई, एक शाही वंश, एक राजसत्ता और एक महान ट्रेडिशन की रक्षा की। उन्होंने अपने मातृत्व का सबसे बड़ा बलिदान देकर मेवाड़ के भविष्य को बचाया। सलाम करते हैं हम उस ममता को और उस देश प्रेम को।

और बहन भाइयों, भारत भूमि को यह गौरव प्राप्त है कि जब जब उसे जैसे जैसे महापुरुषों की आवश्यकता हुई, उनका अवतरण हुआ, वो प्रकट हुए, उन्होंने बलिदान दिए, उन्होंने देश की रक्षा की।

0: यह अपना राजपुताना नाज जिसे तलवारों पे, इसका सारा जीवन बीता बरछे तीर कटारों पे, ये प्रताप का वतन पला है आजादी के नारों पे, कूद पड़ी थी यहाँ हजारों पद्मिनियां अंगारों पे। यह मुल्क मराठों का, ये यहाँ शिवाजी डोला था, मुगलों की ताकत को उसने तलवारों पे तोला था। हर पर्वत पर आग लगी थी, हर पत्थर एक शोला था, बोली हर हर महादेव की बच्चा बच्चा बोला था। क्यों ना प्रणाम करें उस भारत भूमि को, देव भूमि को। तो भाई आज के चिंतन में शामिल आलेख आज बता दूं फिर से, महाराणा उदय सिंह का जन्मदिन है। महाराणा उदय सिंह भाई मेवाड़ के वो महाराणा जिन्हें बचपन में कत्ल करने की कोशिश की और एक उनकी आया माने, उनकी पन्नाधाय माने उनका जीवन बचाया अपने बेटे का बलिदान देकर। 1522 में उदय सिंह राणा जन्मे थे, उन्हें याद करें तो पन्नाधाय का बलिदान याद आता है, मेवाड़ याद आता है, चित्तौड़ याद आता है। ये वही उदय राणा, महाराणा उदय सिंह जिन्होंने उदयपुर बसाया और वही जिनकी संतान महाराणा प्रताप ने हमें गर्व से सीना तान कर जीना सिखाया। आज के चिंतन के लिए आलेख हमें भारतीय उच्चायोग से हमारे मित्र अजय ठाकुर ने भिजवाया। गीत जो हमने आपको सुनाया भाई वो देशभक्ति का गीत स्वर्गीय प्रदीप जी की रचना थी। आज का चिंतन, आज का विचार अब समाप्त होता है। याद दिला दूं आपको, चिंतन हर रोज मंडे टू फ्राइडे 11 बजे की खबरों के बाद मनोरंजन कार्यक्रम में शामिल किया जाता है।
1: चिंतन चिंतन।
0: आइए अब लौटते हैं अपने मूल रंग की ओर, मनोरंजन।
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India UK. आज एक पाउंड के बदले 127.65 रुपए दे रहे हैं भाई भारतीय करेंसी में। If you want to send the money to your friends, your family members, it's a good time. 127.65 rupees in Indian currency for one pound. You can transfer via branch, online or by using the Yono SBI UK mobile app. Remember, terms and conditions apply.
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
3: Leica Radio. This part of the show is brought to you by 108 Base Hospital Uri. Starts 15th of August every Saturday and Sunday at 7 p.m. on Colors TV.
4: I hope Major Naina hum log work par pahunche.
5: Leicester, तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए। Jay's Entertainment presents Bollywood Legend live in concert featuring Bollywood actor Sanjay Kapoor, playback singer Amantrika, और female singer Mayuri Patalia. Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 p.m. Show starts 7 p.m. Tickets book kare demontforthall.co.uk
6: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 0786028065. Exclusive radio partner, Leica Radio.
7: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit Ambala.
8: After the smash hit run in 2025, Surinderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bhangra and The Deranged Marriage, Rifko Theatre Company turned this classic panto tale on its head and give it an exciting Desi twist.
9: Be sure to catch the show across the Midlands, the Belgrade Theatre Coventry, Thursday the 16th to Sunday the 19th of July, and at the Crescent Theatre Birmingham, Wednesday the 9th to Saturday the 12th of September, and Wednesday the 30th of September to Saturday the 3rd of October. Click riffgotheatre.com for more info, and with tickets from just £15, make sure you book before the clock strikes midnight.
1: Southall Travel, 7 days a week. Southall Travel, 24 hours a day, we're at our peak.
10: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
1: Southall Travel.
11: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
1: Southall Travel can take you there.
12: Southall Travel, at all protected.
7: Leicester's iconic hot potato shop is now serving up fresh flavour at Foss Park. After 45 years on Belgrave Road, we've rolled in with another brand new Airstream trailer, serving piping hot loaded jacket potatoes and fresh cut chips made to order. Open 7 days a week with generous portions and unbeatable taste. Find us outside M&S next to the Barclays Hub. Look for the shiny Airstream and grab your favourite today. Hot potato shop, now at Foss Park.
13: Mum always said, beta, clove and neem keep the mouth healthy. Now that same trusted wisdom comes from Baidyanath, over 100 years of Ayurvedic legacy in Siddhayu toothpaste. Fresh breath, strong gums, pure herbal care. Siddhayu, now available in Falcon Cash and Carry, Leicester and Nottingham. Siddhayu, Ayurveda that fits your life.

0: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
1: जय हो राधे श्याम की, जय हो सियाराम की, और जय हो बंबई धाम की। ई है

आपस में जंग, हाँ आपस में जंग, हाँ आपस में जंग, जय घुमा के। अरे समंदर में जैसे है घुल गई भंग, ये रंग देख के मैं हो गया दंग। तो क्या समझे

0: Breaker Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester, and the Midlands with the UK's biggest Asian hits.
1: तो साहब बैक टू बैक संगीत आप सुन रहे थे और इनमें एक गीत अभी आपने किशोर दा की आवाज में सुना। आपको बता दें कि आज किशोर कुमार साहब का जन्मदिन, जिसे हम किशोर जयंती कह सकते हैं भाई, वो है। और ऐसे अवसर पर दिन भर लोग उन्हें श्रद्धांजलि देंगे, हमारे साथी प्रेजेंटर्स विशेषकर बाली भाई, और उनकी आवाज के कई दबे छुपे गीत आपको सुनने को मिलेंगे। लाइका रेडियो नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं समय मनोरंजन।
0: लाइका रेडियो फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
1: किशोर दा के मैदान में उतरने से पहले भाई कुछ और गायक कलाकार जो है धूम मचा रहे थे, उनमें शामिल हैं मुकेश जी, रफी साहब, मन्ना डे, सभी आवाजें एक से बढ़कर एक। और ऐसे में फिर किशोर दा आए जिन्होंने कुछ हटकर गीत गाए।
3: देखो देखो मैं

0: Good Track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
3: Leica Radio.
0: Leica Extra Podcast Update.
4: और आपको बता दें कि भाई लाइका एक्स्ट्रा पर हमारा नया एपिसोड नंबर 27 इज देयर. ऑनर बेस्ड अब्यूज बहुत बर्निंग टॉपिक है. दीप राजा और खुश भाई डिस्कस कर रहे हैं. बहुत सारी ये जानकारी जो है इसमें आपको मिलेगी. दिस इंस्टेंस एपिसोड अनकवर्स द हार्श रियलिटी ऑफ ऑनर बेस्ड अब्यूज इन आवर देसी कम्युनिटीज. बहुत है, अब ये मत सोचिए दबी छुपी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जिस पर भाई क्या कहें. अब आप देखने के बाद सोचिएगा कि क्या किया जा सकता है, क्या कहा जा सकता है. लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग platforms.
0: Leica Extra is here. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. Ye hai Leica Radio.
5: Leica Stock up and save at Falcon Cash and Carry. Falcon Chakki Atta 10 kg, 749. Leela Medium Atta 10 kg, just 399. Disha Extra Long Basmati Rice 20 kg, 24.99. Hira Butter Ghee 2 kg, 10.99. And Falcon Paneer Box 8.99. Get Falcon Kesar Mango Pulp for 149. Tata Salt for 69p. Kisan Hot and Spicy Sauce for 99p. And 2 Falcon Red Lentils 1.5 kg for 399. Mido Yogurt 10 kg, 8.99. Karela or Long Dudi 2.99 per kilo. Offers valid from 6th July to 2nd August at Falcon Cash and Carry, 82A Syston Street West, Leicester, LE1 2JU and 2A Rollout Hill, Leicester, LE5 4UN.

0: bringing the hits, the energy, and those proper live stage vibes.
1: Hosted by the team of Lyco Radio Network, Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester.
0: An event by 101 Circle in association with Leicester City Council,
1: Arts Council England.
2: खाखरा क्रंच भाकरी मंच चिक्की स्वीट पापड़ बीट पिकल्स हीट ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक
3: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स खाखरा नमकीन पापड़ पिकल्स चिक्की पॉट मील्स एंड मच मोर
2: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स
4: लाइक अ रेडियो नेटवर्क प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रगासन
5: नाम हमजा अली मजारी तुम्हारा उद्देश्य सिर्फ पाकिस्तान में घुसना नहीं है
6: धुरंधर 15th and 16th of August at 9 PM on Star Gold Title sponsor Watchdog Security Associate sponsor Lemfi भोजपुरी बवाल
7: पवन जी मैंने सुना है आप दोनों के रिलेशन अच्छे नहीं है
8: आप सीधे सीधे आरोप लगा रही हो
9: कहां सही झगड़ा चलता भाई
6: द ब्रांड न्यू रियलिटी टीवी शो भोजपुरी बवाल मंडे टू संडे एट 10 PM ऑन कलर्स टीवी
1: Lemfi मींस क्विकर एंड सेफ वे टू सेंड मनी
6: Lemfi मींस लो ट्रांजेक्शन फीस एंड ग्रेट एक्सचेंज रेट
1: Lemfi मींस £10 साइन अप बोनस ऑन रजिस्ट्रेशन फॉर ट्रांजेक्शन ओवर £50 जस्ट यूज द कोड लाइक
6: सो सेंड मनी टुडे टू India, Pakistan or Bangladesh with Lemfi. Download the LEMFI mobile app today.
10: Lemfi is registered by the FCA. T's and C's apply.
11: This is an urgent appeal from the Disasters Emergency Committee. Two devastating earthquakes have hit Venezuela and survivors desperately need your help. Go to dec.org.uk to donate or text radio to 70150 to give £10. Text costs your donation plus standard network rate. Thank you.
4: New hits on Lyco Radio.

0: हर हंसी चीज के कदरदान थे भाई किशोर कुमार, रस के फूलों के बीमार। चार शादियां की नहीं, एक एक बार मेरी, ऐसे नहीं चारों इकट्ठी नहीं। पहली पत्नी रूमा गुहा, जिनसे उनके सुपुत्र भाई अमित कुमार हैं, और दूसरी शादी, उनसे तलाक उनका हो गया 8 साल बाद। फिर उन्होंने मधुबाला से शादी की, 9 साल तक वो शादी चली। फिर योगिता बाली के साथ विवाह बंधन में बंधे, क्योंकि मधुबाला की डेथ हो गई थी 1969 में। और फिर भाई योगिता बाली से भी डिवोर्स हो गया 1978 में। ये शादी बहुत कम चली, समझो करीब 1.5-2 साल। और उसके बाद आखिर में उन्होंने 1980 में लीना चंदावरकर से शादी की, और वो जो है उनके अंतिम समय तक उनके साथ रही। उनकी 2 संतानें अमित कुमार और सुमित कुमार, जो लीना चंदावरकर से उनके दूसरे बेटे भाई गाते हैं वो भी। सुमित भी यहाँ आए थे शो करने अमित कुमार के साथ। अमित कुमार तो आप जानते ही हैं, फेमस सिंगर हैं। किशोर दा जैसी आवाज कितने लोगों ने बनाने की कोशिश की भाई। लोग कहते हैं कुमार सानू उसी अंदाज में गाते हैं रहे हैं, और अमित कुमार भी गाते हैं, और भी कई गायक कलाकारों ने जो है वो आवाज निकालने की कोशिश की, लेकिन किशोर तो फिर किशोर थे, ऐसा नहीं कोई और।
1: Hello there, my name is Deep Raja and I do the weekend breakfast show from 7 a.m. Saturdays and Sundays. Like a gold in London, the Midlands and Manchester.
2: One and only one, Ravi Sharma on your number one.

0: मैं भी पागल हो जाऊंगा अगर समय के साथ नहीं चल पाऊंगा तो। भाई घड़ी की तरफ देखो शर्मा जी, आपको बहुत कुछ शामिल करना है खबरों की ओर जाने से पहले।
1: करेंसी अपडेट्स स्पॉन्सर्ड बाय लेमफाई मोबाइल ऐप। सेंड मनी टू इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश स्विफ्टली फ्रॉम योर फोन।
0: एंड लेट मी टेल यू द करेंसी रेट्स भाई, लेमफाई के एक पाउंड के बदले इस समय इन इंडियन करेंसी दे आर गिविंग 128.17 रुपीज, पाकिस्तानी करेंसी में 373.97, श्रीलंकन रुपए 451.85, बांग्लादेशी टके 166.34 और अफगान अफगानी 88.08.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKER. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
3: LIKER Radio.
1: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: Well, the gold is sold at the rate of 97.13 pounds per gram.
1: Specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester or call 0116 266 4278.
3: Leica Radio.
4: This part of the show is brought to you by 108 Base Hospital Uri. Starts 15th of August every Saturday and Sunday at 7 PM on Colors TV.
5: I hope Major Nena hum log waqt par pahunche.
6: City Bond Travel proudly presents Yatra Tours 2026.
7: Discover Kailas Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
6: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra Tour.
7: Also explore 2026 cruises
6: from Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester or call City Bond Travel on 01162 167 225. We're at all protected.

0: Disha Basmati Rice, available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक हैं? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं, जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं। एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। शुरुआती सैलरी है 39,500 पाउंड, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स। दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स।
2: Location, location, location.
3: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
5: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas, Greens, start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 020-396-35757. Greens by Danube. Prime location,
4: high appreciation
5: in Dubai.
6: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
7: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy
6: live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
7: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
6: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
7: Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
8: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य BAPS स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ। आ पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ अपना परिवार साथे, जहां मळशे शांति, भक्ति अने आनंद, अने साथे आईफिल टावर, सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद माणो। डिपार्चर 5 सप्टेम्बर ना मंत्रा हॉलिडेज। कॉल करो 02037736333। मंत्रा हॉलिडेज, व्हाट्स योर ट्रेवल मंत्रा?
9: Get ready. Pepe's Piri Piri is firing up something big. Our store is now open. From flame grilled chicken to mouth-watering wraps. It's bold, it's spicy, it's pure Pepe's. Visit us at 126 Abbey Street, CV 11 5BZ. Pepe's Piri Piri. Pepe-licious.
10: Creative Team Events and Peace Nation UK brings to you the King of Sufi Music, Lakhvinder Vidali, to London and Birmingham this October. For sponsorship inquiries, call 07959-250-376.
11: Bring your vision to reality with ImagineX Global. Our team of Imagineers create immersive experiences from digital content to epic live events. Whether it's a high-energy concert, an innovative conference, sleek brand visuals or stunning photography and videography, for your special moments, we have you covered. We're a tech-driven, human-led creative experience company delivering cutting-edge digital solutions and expert event management. Let's turn your ideas into epic memories. Contact us today at imaginexglobal.com or WhatsApp 0758-580-1801. And let your ideas take center stage. ImagineX Global, where creativity, technology, and humanity unite the world.
12: You know how fans shout at football matches?
13: Oh, wake up!
12: That's because sound is the most effective way to tell the players they're rubbish. Works in advertising too. Because when you amplify your advertising using radio, your campaign is 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
14: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
15: और बहन भाइयों, अगला गीत हमें लेकर के खबरों तक चलेगा। भाई, अगले गीत के साथ एक कहानी याद आ रही है, एक सच्ची घटना याद आ रही है। भैया, अगला गीत जिस फिल्म से है ना, उसके प्रोड्यूसर जो हैं वो फिल्मी दुनिया से बड़े निराश होकर के जो है वापस लौट रहे थे, क्योंकि उनके साथ कुछ ऐसा बर्ताव हुआ था। वो अपने एक प्यारे दोस्त, बचपन के दोस्त, एक हीरो के पास गए और कहने लगे कि मेरे पास ये कहानी है, मैं इसे लेकर के फिल्म बनाना चाहता हूँ, काम करेंगे? उसने कहा मेरी फीस 65,000 है। उस सुपरस्टार ने, उस दौर के भाई सुपर हीरो थे वो, उन्होंने कहा मेरी फीस 65,000 है, लेकिन तुमसे 1,00,000 लूंगा। अरे कैसे दोस्त हो यार, मुझसे 1,00,000 रुपए क्यों? बोले इसलिए कि तुम्हारी ये कहानी है फ्लॉप, फिल्म फ्लॉप होगी, उससे मेरी इमेज को ठेस पहुंचेगी, तो इमेज गिरेगी, तो इसलिए ज्यादा पैसे लूंगा। बड़े निराश हुए भाई। जानते हैं कौन थे वो हीरो? शम्मी कपूर। अब शम्मी कपूर ने भाई एक तरह से इनकार कर दिया उनके साथ काम करने से। शम्मी कपूर के पिता श्री पृथ्वीराज कपूर ने भी उनसे कहा कि यहाँ से भैया अपना बोरिया बिस्तर समेट के वापस ले जाओ, अपने पिताजी का कारोबार संभालो। इतना ही नहीं भाई, उनको कई लोगों ने निराश किया और वो वापस लौटने ही वाले थे कि वो फेमस स्टूडियो से बाहर निकल रहे थे तो पीछे से किसी ने आवाज दी। कौन थे जानते हैं? वो उनका नाम था लेख टंडन। पीछे से आवाज दी, लेख जी। पीछे मुड़कर देखा तो शंकर जयकिशन, दो महान संगीतकार। कहाँ चले? बोले वापस। अरे क्यों? मेरे पास कहानी है लेकिन कोई हीरो नहीं काम करने को तैयार। उन्होंने कहा देखो हीरो तैयार होंगे, तुम्हारी फिल्म में संगीत शंकर जयकिशन का होगा, बस ये खबर निकलवा दो। और बहन भाइयों अगले दिन जयकिशन के घर पर सारे मिलकर के बैठे, 18 धुने उनको सुनाई गई, उनमें से 5 धुने चुन ली लेख टंडन ने। और जैसे ही पता चला कि शंकर जयकिशन उनकी फिल्म में संगीत दे रहे हैं तो फाइनेंसर्स की लाइन लग गई लेख टंडन के सामने। और फिर उन धुनों ने और उन धुनों पर सवार आवाजों ने ऐसी धूम मचाई कि फिल्म सुपरहिट हो गई। शमी कपूर भी उस फिल्म में काम करने के लिए दौड़ते हुए आए लेख टंडन के पास, मैं काम करूंगा। ऐसा असर होता है संगीत में। कौन सा गाना था भाई वो जिसने बहुत धूम मचाई? क्योंकि एक धुन लेख टंडन ने रिजेक्ट कर दी। रिजेक्ट की तो जयकिशन ने कहा यही धुन सबसे ज्यादा सुपरहिट होगी लेख जी, इसे जरूर रखो, ये जयकिशन का वादा है, हमारा दृढ़ इरादा है, इसे जरूर रखो। कौन सा गीत था वो, कौन सी धुन थी वो, सुनिए रफी और लता जी को।

आए भाई बहुत सारे लोग आए गांव में। देखिए कभी कोई ना तो फाइनेंसर मिलता था ना प्रोड्यूसर मिलता था, और डायरेक्टर लेख टंडन जो है वापस लौटने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन ऐसे ऐसे गीतों ने फिल्म को सुपरहिट बना दिया। प्रोफेसर भाई मैं ये कहानी सुना रहा था, वैसे ये काम तो बाली भाई का है, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा ये जानकारी आप तक पहुंचाऊं भाई कि गीतों के कारण फिल्म हिट हो जाती है। आवाज देकर हमें तुम बुलाओ, रफी साहब और लता जी ने इस फिल्म को अमर बना दिया। और ये जयकिशन ने वादा किया था कि लेख टंडन जी आप ये धुने लो और फिर उसके बाद फिल्म बनाओ और देखना। फिल्म को शायद लोग भूल जाएं, संवाद भूल जाएं, हीरो को भूल जाएं, लेकिन ये धुने हमेशा गुनगुनाई जाएंगी, दोहराई जाएंगी, लोग पसंद करेंगे। पसंद करते हैं ना सुपरहिट म्यूजिक। आवाज एक और गीत था, ए गुल बदन फूलों की महक कांटों की चुभन, शंकर जयकिशन का संगीत हो, हसरत जयपुरी की शब्दावली हो, हसरत जयपुरी और साथ में

0: शैलेंद्र भी, हसरत शैलेंद्र ने इस फिल्म के गीत लिखे थे। तो ऐसी कई घटनाएं घटी, कुछ आदमी फिल्मों से बन गए और कुछ बिगड़ गए, उजड़ गए। भाई फिल्में जो है कभी कभी तबाह भी कर देती हैं, फाइनेंशियल हालत बिल्कुल तोड़ के रख देती हैं। बड़ी घटनाएं घटती हैं फिल्मी दुनिया में। आइए लौट आइए स्टूडियो की ओर, संगीत की ओर, मनोरंजन की ओर। और याद दिला दो बहनों भाइयों, दिस इज द लास्ट आवर ऑफ मनोरंजन प्रोग्राम विद रवि शर्मा। एंड 1 बजे की खबरों के बाद आपके मेजबान होंगे बाली, बाली ब्रह्म भट्ट।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके, या आपको भाई बता रहे हैं कि पैसे अपनों को भिजवाना चाहें भारत में तो 1 पाउंड के बदले दे आर गिविंग 127.65 रुपीज, 127.65 रुपए का रेट वो दे रहे हैं। और यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI यूके मोबाइल ऐप। ये भाई रेट चल रहा है भारतीय रुपए का पाउंड के मुकाबले SBI यूके में। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। टीज एंड सीज अप्लाई। दिस इज द लाइकर रेडियो नेटवर्क अक्रॉस लंदन, मैनचेस्टर एंड द मिडलैंड्स।
2: दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय 108 बेस हॉस्पिटल उरी। स्टार्ट्स 15th ऑफ ऑगस्ट एवरी सैटरडे एंड संडे एट 7 PM ऑन कलर्स टीवी।
3: आई होप मेरे नैना हम लोग वक्त पर पहुंचे।
4: लेस्टर तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए। जेज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बॉलीवुड लेजेंड लाइव इन कॉन्सर्ट फीचरिंग बॉलीवुड एक्टर संजय कपूर, प्लेबैक सिंगर अमन त्रिका और फीमेल सिंगर मयूरी पटालिया। संडे 27th of September, डी मॉन्टफोर्ट हॉल लेस्टर। डोर्स ओपन 6:30 PM, शो स्टार्ट्स 7 PM। टिकट्स बुक करें demontforthall.co.uk
5: या मुंबई सैंडविच स्टेशन ऑन 0116-332-0262 और कॉल मिस्टर बी ऑन 0786028-0655। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो।
6: Leicester's iconic hot potato shop is now serving up fresh flavor at Foss Park. After 45 years on Belgrave Road, we've rolled in with another brand new Airstream trailer, serving piping hot loaded jacket potatoes and fresh cut chips made to order. Open 7 days a week with generous portions and unbeatable taste. Find us outside M&S next to the Barclays Hub. Look for the shiny Airstream and grab your favorite today. Hot potato shop now at Foss Park.
7: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk. UK.
8: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाए तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208574-8410। दैट्स 0208574-8410।
9: साफ Atoll protected. Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
10: Hey, friends ke saath weekend party ho ya khud ke saath Netflix and chill, a desi tadka is total risk, hai na?
11: Well, she is talking about Jaimin Food Potato Chips. Crunchy, tasty and total desi swad in 4 mazedar flavors.
10: Crunch cannot wait. So visit your nearest ethnic store and grab your Jaimin Foods potato chips now.
12: Bollywood's biggest 90s songs non-stop.

0: to Laika Radio 90s. 90s. On Laika Radio mobile app, laikaradio.com and Alexa. Play Laika Radio 90s. Laika Gold. Officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and laikagold.com. Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Laika Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
1: और बहनों भाइयों, जानते हैं इस सप्ताह का कलाकार कौन है? Artist of the Week is Biswajit Chatterjee. Well, famous as Biswajit. और भाई विश्वजीत को बिस्वजीत कहती है तो साफ पता लगता है कि भाई जरूरी बंगाली रहे होंगे. Yes. अपने जमाने के हैंडसम और हिट हीरो बिस्वजीत हैं आर्टिस्ट ऑफ द वीक. अब जो गीत हम सुनवा रहे हैं भाई, आप सोचेंगे इसमें तो मेल वॉइस है ही नहीं, तो बिस्वजीत कहाँ फिट होते हैं? फिल्म में हीरो बिस्वजीत थे और गाने में बिस्वजीत परफॉर्म करते हैं लड़की बनकर के. शमशाद बेगम की आवाज उन पर पिक्चराइज हुई, आशा भोसले की आवाज बबीता पर. बबीता मेल रोल में और बिस्वजीत फीमेल रोल में नजर आए.

0: एक तो भाई आवाजें आशा भोसले और शमशाद बेगम की, ऊपर से संगीत ओपी नैयर का। ये फिल्म किस्मत भाई अपने गीतों के कारण हिट हुई थी। विश्वजीत ही इज द आर्टिस्ट ऑफ द वीक। और भाई इस फिल्म में बबीता के साथ वो हीरो थे, और क्या गीत थे, क्या संगीत था, क्या कहानी थी फिल्म की। तो विश्वजीत इस सप्ताह के आर्टिस्ट हैं, उनकी कई फिल्मों के गीत आप सुनेंगे इन दिनों में। विश्वजीत भाई काफी बुजुर्ग हो गए हैं, लोग उनकी लंबी उम्र की दुआ मांग रहे हैं। इस साल जब वो अपना जन्मदिन मनाएंगे तो 90 के हो जाएंगे, और किसी जमाने में क्या हैंडसम हीरो होते थे। विश्वजीत साहब तो बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन साहब चेहरे पर वो रौनक आप देख सकते हैं अब भी उनका।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: सावन का महीना चल रहा है, सावन आ तो गया लेकिन कहीं दिखाई नहीं दिया, मतलब झूम के नहीं आया, घूम के आया पर झूम के नहीं आया।

0: आया सावन झूम के, रफी साहब और लता जी, भाई ये दो आवाजें तो क्या कहें, सदियों तक, युगों तक जो है संगीत प्रेमियों के दिलों में धड़कने जगाती रहेंगी, लोग गुनगुनाते रहेंगे और रफी जी और लता जी याद आते
1: रहेंगे। Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: भाई हितेश भाई, आपने इंडिया से जो लतीफा लिख के भेजा वो आधा कट गया, भाई दोबारा भेजना, हम प्रोग्राम में शामिल करके लोगों को हंसाने की कोशिश करेंगे, खुद भी हंसेंगे। राजेंद्र सिंह कालड़ा जी, आपने लेख टंडन जी के बारे में लिखा है कि उन्होंने एक ब्यूटीफुल फिल्म बनाई थी आम्रपाली, पर चली नहीं। कई बार ऐसा होता है कि लोग फिल्म को पूरी तरह से फॉलो नहीं कर पाते या समझ नहीं पाते कि भाई प्रोड्यूसर या डायरेक्टर या लेखक क्या कहना चाहता है, क्या संदेश दे रहा है। ऐसे ही मेरा नाम जोकर फिल्म आई थी, बहुत दिल से जान से बनाई थी राज कपूर साहब ने, चली नहीं। मैं सही बताऊं आपको, लेकिन बाद में बॉबी बनाई तो दौड़ी फिल्म, सारे नुकसान पूरे कर दिए उसने। और हमें संदेश मिला, एजाज भाई आप एक एक गाना बड़े ध्यान से सुनते हैं और फिर प्रतिक्रिया देते हैं, सो नाइस ऑफ यू, थैंक्स फॉर प्लेइंग द सॉन्ग, आपको अच्छा लगा, जो गीत आपको पसंद आए अपने नाम कर लीजिएगा, आप ही के लिए है। और भाई विजय सटन से नैना शाह, नैना जी आप जो गीत सुझाती है ना, कभी कभी ढूंढने बड़े मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन आपके सजेशंस बड़े काम के हैं, काम आते हैं। विजय मॉरिशस वाले प्रमोद, पम्मी सिंह स्लव वाले नरेंद्र पांचाल, रानी अर्जन भाई, जगदीश जी, नीला चौधरी जी, निर्मला जी, सुनीता शर्मा, वत्सला, सरस्वती पंडित जी, भाई आप सब लोगों को चिंतन बहुत अच्छा लगा, देशभक्ति के भाव जागे। आपको फिर याद दिला दूं, 22 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं भारत के भारतवंशी लोग, नवनेट सेंटर में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग, फ्री फूड, फ्री एंटरटेनमेंट, एवरीथिंग फ्री बिकॉज इट इज योर इवेंट। तो भाई इंडियन हाई कमीशन और इंडियन डायस्पोरा ये कार्यक्रम कर रहे हैं, झंडा लहराया जाएगा, तो नवनेट सेंटर, प्रिंटिंग हाउस लेन, हेज में। वंदे मातरम ये कह रहे हैं आप, और आपने अपना नाम नहीं लिखा जी, आप हैं कंचन अग्निहोत्री जी, मुझे पहचान लेना चाहिए था आपकी लिखाई पर, यह टाइप किया हुआ है। राजीव पटेल, हरविंदर जी, थैंक यू वेरी मच। प्रतिभा कहती है चिंतन सुनकर एक बार फिर दिल भराया, यो तो स्कूल में ये कहानी पढ़ी थी किताबों में, भाई पन्ना धाई की कहानी थी आज, क्योंकि आज उदय सिंह राणा का जन्मदिन है, मतलब वो आज के दिन जन्मे थे, पन्ना धाई मशहूर भाई आया, जिन्होंने अपने पुत्र का बलिदान देकर के राणा वंश को बचाया। उल्लास टोरंटो में है, सुन रहे हैं सलामत मेडस्टोन में, सलमा, सलामत नहीं है सलमा। देखो भाई किसी का नाम अगर गलत बोला जाए तो फौरन 10 पाउंड पे करके ठीक करवा लेना है। एक सूचना भी तो है हमारे पास, और वो ये कि लाइका रेडियो नेटवर्क इज प्राउड टू टीम अप विद भारतीय विद्या भवन फॉर द समर शोकेस 2026 एट हैरो स्कूल। और ये वही हैरो स्कूल है ना जहां कभी जवाहरलाल नेहरू स्टूडेंट थे। एक्सपीरियंस द रिचनेस ऑफ इंडियन क्लासिकल आर्ट्स एंड कल्चर इन एन अनफॉरगेटेबल सेलिब्रेशन ऑफ म्यूजिक, डांस एंड आर्टिस्टिक एक्सीलेंस ऑन सैटरडे द 8th ऑफ ऑगस्ट फ्रॉम 3 PM ऑनवर्ड्स। टिकट्स अवेलेबल फ्रॉम ticketsource.com/bhavan और कॉल 07421497541।
2: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.

0: गायक बन गए।
1: किशोर कुमार सिर्फ गायक कलाकार नहीं थे भाई, परफॉर्मर थे। स्टेज पर उनकी हरकतें जो हैं मस्त बना देती थी दर्शकों को। प्रोग्राम की शुरुआत ही कुछ इस तरह से किया करते थे ना, मेरे चाचा चाचियो, मेरे ताऊ ताईयो, मेरे बहनों भाइयो, मैं हूं आपका किशोर कुमार। वो बाली भाई लेके आएंगे और आपको सुनवाएंगे। लेकिन एक बात बताएं आपको भाई, आशा जी और किशोर कुमार की जोड़ी ने बहुत सुपरहिट गीत दिए फिल्मी दुनिया में। आज उनकी जयंती है तो बहुत सारे गीत सुनने को मिलेंगे आपको आने वाले कार्यक्रमों में।
2: ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर
1: किशोर की आवाज
2: कोका नूडल्स। Tasty, healthy flavors. Perfect for my busy day. Available in your nearest convenience store.
3: Manoranjan with Ravi Sharma. Like a radio.
4: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: और LemFi की रेट हम बता रहे हैं, एक पाउंड के बदले कितने रुपए दे रहे हैं LemFi वाले, नोट कीजिए। डिफरेंट कंट्रीज की करेंसीज में LemFi गिविंग इन इंडियन करेंसी फॉर वन पाउंड दे आर गिविंग 128.19 रुपीस, पाकिस्तानी 373.41 रुपीस, श्रीलंकन रुपए 451.46, बांग्लादेशी टके 166.47, अफगान अफगानी 88.13 एंड केनियन शिलिंग्स 174.1।
4: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is LIKA Radio.
1: Gold Rate. Sone ka bhav. Is samay gold is sold at the rate of 96 pounds and 96 pence का एक ग्राम सोना इस समय बिक रहा है।
4: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278.
5: Hello. Wake up with me, Kajal, on The Breakfast Show, where I take you down memory lane, get inspired by Morning Mantra, Monday to Friday, 6 a.m. to 10 a.m, Like a Gold and Like a Radio Midlands.
1: धीरे धीरे हम कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन भाई एक गीत की फरमाइश हिंदुस्तान से आई है, मधु चोपड़ा ने भिजवाई है। मधु चोपड़ा भाई खुद एक गायक कलाकार हैं, पर कहती हैं कि मेरे भी फेवरेट किशोर कुमार हैं, और उनकी आवाज में ये गीत अगर विदेश में बज रहे रेडियो से आए तो भाई दिल झूम जाए। कौन सा गीत? ये वाला।

0: Mamster નું પાણીપુરી અને પાણીપુરી નો પાણી.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to say everything in English, but louder.
3: Four beers, please, garçon!
2: Just like when you amplify your advertising with radio. 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org. 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears! Give or take. Amplify your advertising at radiocentre.org.
4: मनोरंजन विद रवि शर्मा.
5: और बहनों भाइयों, कार्यक्रम के समापन के समय मुझे याद आ रहा है वो दिन 13 अक्टूबर 1987, जब किशोर कुमार के निधन की खबर आई थी. वो कलाकार जो स्टेज पर धूम मचाता था, जो गाता था, नाचता था, दिल बहलाता था, भाई कॉमेडी करने में जवाब नहीं था. किशोर दा का परफॉर्मर थे जैसा मैंने कहा, लेकिन जाते जाते कितने ही संगीत प्रेमियों को रुला गया वो स्वर जो सबके दिल को भाता था.
6: चलते चलते
5: भावपूर्ण श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए भाई मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ. बाली ब्रह्म भट्ट आ रहे हैं, उनके पास तो खजाना है भाई, कलाकारों की जिंदगी के पूरे एनसाइक्लोपीडिया है. वो भी बहुत कुछ बताएंगे और बहुत कुछ सुनवाएंगे. किशोर दा को सलाम कहते हुए रवि शर्मा इज साइनिंग ऑफ. हैव अ सुपर्ब डे. बाय बाय फ्रॉम मी नाउ.

0: एंड देखा जाए तो जो गाने मैं आज पेश करने वाला हूं, आपको जो किशोर कुमार का एक इमेज होता है वो शायद बदल जाएगा, क्योंकि मैंने उनके सोबर गाने चूज किए हैं। कुछ कुछ चटपटे गाने होते हैं, क्योंकि म्यूजिक डायरेक्टर ने सिर्फ अगर फास्ट पेस्ड गाने उनको गवाए हों तो मुझे वो ही बजाना पड़ेगा, लेकिन मोस्ट प्रॉबली मैं आपको सब ऐसे गाने सुनाऊंगा जिससे आपको जाहिर होगा एट द एंड ऑफ द 3 hours दैट ही वॉज अ सिंगर ऑफ सिंगर्स, नो डाउट अबाउट इट। जैसे मैंने कहा, किशोरदास सिर्फ गाते नहीं थे, वो जिंदगी जीते थे, गाकर जिंदगी जीते थे, और सबसे जुदा, सबसे अलग, सर्व प्रतिभाव। एंड देखा जाए तो संपन्न गीत की दुनिया की यू कैन से शान सर्वेश्री किशोर कुमार साहब। तो मैंने रात को बैठकर कुछ प्लान बनाया और मैंने सोचा कि ए टू जेड जितने भी म्यूजिक डायरेक्टर्स इसमें समा जाते हैं जिन्होंने किशोरदा को गवाया, उनका एक बेस्ट चुनिंदा गाना। तो बप्पी दा ने तो मतलब पूछो ना, शराबी के गाने, मतलब चटपटे गाने सब गवाए हैं, लेकिन मैंने ऐसे सोबर गाने चूज किए हैं किशोरदा के जो आपको बहुत रिलैक्स कर देगा इन द 3 hours दैट आई विल। ही वॉज अ वॉइस ऑफ मैनी बट मेनली राजेश खन्ना, नो डाउट एवरीबडी नोज। लेकिन बप्पीदा ने कॉलेज गर्ल फिल्म थी 1978 की, एक 1960 की कॉलेज गर्ल थी जिसमें शंकर जयकिशन का संगीत था, ये है बप्पीदा का संगीत विच वॉज इंदिवर की लिरिक्स, प्यार मांगा है तुम ही से। एंड देन चित्रगुप्त बी के बाद सी, चित्रगुप्त छेड़ो ना मेरी जुल्फें, गंगा की लहरें या तो मचलती हुई हवा में, और ये गाना बड़ा कैची है नो डाउट। सी में सी रामचंद्र आते हैं नेक्स्ट, उसके बाद हृदयनाथ मंगेशकर फ्रॉम एच, हुस्नलाल भगतराम एच, के से कल्याण जी आनंद जी, के से खयाम, के से किशोर कुमार हिमसेल्फ जिन्होंने सेल्फ कंपोजिशंस अपने आप के लिए बनाए थे, एल से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एल, एम से मदन मोहन, ओ से ओपी नैयर, आर से आर डी बर्मन, आर से राजेश रोशन, आर से रवि, आर से रविंद्र जैन, एस से एस डी बर्मन, एस से सलील चौधरी, एस से शंकर जयकिशन, एस से सपन चक्रवर्ती, एस से श्यामल मित्रा और यू से उषा खन्ना। ये सब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मैं आपको गाने सुनाऊंगा, चुने हुए, मेरी सिलेक्शन, उम्मीद है आपको पसंद आए। एंड रादर देन टॉक अबाउट कहाँ जन्मे थे और ही डाइड एट द एज ऑफ 58 इन मुंबई, लेकिन ये सब बातें तो सबको मालूम होती है, हम गाने सुनेंगे। उन्होंने जो दिल जीत लिया दुनिया का, नो डाउट ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिंगर्स। लेट्स लिसन टू किशोरदा ऑन हिज 97th बर्थडे।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 in British sterling can get you up to 127.65. 127.65 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gold Afternoons with Bali Brambert. Bali Brambert is proudly sponsored by Jaimin Foods, your trusted name for dal bhat, pav bhaji, biryani and so much more. Available now at your nearest Asian shops. Jaimin Foods, the authentic taste of India.
1: This part of the show is brought to you by 108 Base Hospital Uri. Starts 15th of August every Saturday and Sunday at 7 PM on Colors TV.
3: I hope Major Naina, hum log waqt par pahunche.
4: List up, stock up and save at Falcon Cash & Carry. Falcon Chakki Atta 10 kg, 749. Leela Medium Atta 10 kg, just 399. Disha Extra Long Basmati Rice 20 kg, 24.99. Hira Butter Ghee 2 kg, 10.99. And Falcon Paneer Box 8.99. Get Falcon Kesar Mango Pulp for 149. Tata Salt for 69p. Kisan Hot and Spicy Sauce for 99p. And 2 Falcon Red Lentils 1.5 kg for 399. Mido Yogurt 10 kg, 8.99. Karela or Long Dudi 2.99 per kilo. Offers valid from 6th July to 2nd August at Falcon Cash & Carry, 82A Syston Street West, Leicester, LE1 2JU, and 2A Rollots Hill, Leicester, LE5 4UN.
5: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
6: यू नो दैट क्लीन फ्रेश फीलिंग After brushing, Siddhayu toothpaste takes it to another level. Clove, neem, herbal actives, proper Ayurvedic care, but modern and premium. Fresh breath, healthy gums, no harsh chemicals. From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy.
1: Siddhayu, now available in Falcon Cash & Carry, Leicester and Nottingham.
6: Siddhayu, Ayurved that fits your life.
7: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक है? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं. एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है. शुरुआती सैलरी है 39,500 pounds, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स. दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स.
8: Is back
9: and the stage is about to explode. Confirmed artist
8: Lember Hussain Puri. Get ready for full Punjabi energy, Bhangra beats and live Mela vibes.
9: Hosted by the team of Laika Radio Network, Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester.
8: An event by 101 Circle in association with Leicester City Council,
9: Arts Council England.

0: तेरी।
1: सुनो लाइका रेडियो पंजाबी, लाइका रेडियो मोबाइल ऐप ते, लाइकारेडियो.com ते Alexa प्ले लाइका रेडियो पंजाबी। पंजाबी डाउनलोड द लाइका रेडियो मोबाइल ऐप, लिसन लाइव एंड लिसन बैक टू योर फेवरेट शोज। Like a Cool, London का number one Asian retro music station, अब available है Greater London में 10:35 AM पर DAB Digital Radio पर। Alexa पे बोलो play Like a Cool और online सुनो likeagold.com पे। Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: हृदयनाथ मंगेशकर के लिए फिल्म मशाल के लिए किशोरदा ने गाया था। ये इसके हीरो थे दिलीप कुमार साहब, हु वॉज अ रिपोर्टर, न्यूज पेपर एडिटर एंड लेटर ऑन ही बिकम्स अ ड्रग ट्रैफिकर। उसमें वहीदा रहमान उनकी वाइफ थी, अनिल कपूर वॉज अ ब्लैक मार्केटियर एंड अ लिकर सेलर, लेटर बिकम्स अ प्रेस रिपोर्टर, ये सब। पर गाना बड़ा खूबसूरत। फिल्म वॉज अ फ्लॉप, फर्स्ट फ्लॉप ऑफ दिलीप कुमार साहब, बट हिज एक्टिंग वॉज अप्रिशिएटेड।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Each currency equivalent to one sterling pound. US dollars 1.3453, Indian rupees 128.11, Pakistani rupees 373.42, Afghanis 88.12, Kenyan shillings 174.07, and last but not the least, we have Mauritian rupees 63.28.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Leica Radio.
1: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: Gold is currently trading at £97.67 per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116-266-4278.
2: Leica Radio.
3: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल। एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे।
0: म्यूजिक डायरेक्टर, यू वोंट बिलीव दिस, जे पे आ गए हम, जिमी सिंह। फिल्म है मुकद्दर 1950, किशोर कुमार और आशा भोसले, भरत व्यास की लिरिक्स।

0: A to Z music directors that have composed for Kishore Kumar. हमने बी से शुरू किया बप्पी लहरी, चित्रगुप्त, सी रामचंद्र, हृदयनाथ मंगेशकर, हुसनलाल भगतराम और अब है जे पे जिमी सिंह एंड अनयूजुअल सॉन्ग. यूडलिंग भी किया किशोर दा ने. फिल्म है मुकद्दर 1950 की. जे के बाद आता है के, कल्याण जी आनंद जी.
1: Gold Afternoons. Proudly sponsored by Gemin Foods, the authentic taste of India. Dal bhat, pav bhaji, biryani. Bas pet sambhar jo, kyunki cravings badhne wali hai.
2: This part of the show is brought to you by 108 Base Hospital Uri. Starts 50th of August every Saturday and Sunday at 7 p.m. on Colors TV.
3: I hope mein jana hum log

0: we are presenting Songs of Kishore Kumar by music directors from A to Z. Ab K tak pahunche hain, ek kumari ek kumara. Suniga next.
1: This is the freshest sound across the Midlands. We are Leica Radio.
0: वो था कल्याण जी आनंद जी का गीत, किशोर कुमार ने गाया, प्रकाश मेहरा ने लिखा था. ये है खयाम, थोड़ी सी बेवफाई.

0: गुस्ताखी माफ। संगीत किशोर कुमार का और लिरिक्स मजरूह सुल्तानपुरी की। फिल्म झुमरू। आई एम प्रेजेंटिंग ए टू जेड म्यूजिक डायरेक्टर्स फॉर होम किशोर कुमार सैंग। नेक्स्ट लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एल।
1: He's like a radio across the Midlands.

आप सुन रहे हैं किशोर कुमार जी के गाने ऑन हिज 97th बर्थ एनिवर्सरी। मैंने बैठ के बहुत सोचा कि कैसे मैं पेश करूं। अभी मैं ये भी तो बोल सकता था कि इनके अवार्ड्स थे, हाईएस्ट नंबर ऑफ अवार्ड्स, 8 अवार्ड्स थे, फिल्म आराधना, अमानुष, डॉन, थोड़ी सी बेवफाई, नमक हलाल, अगर तुम ना होते, शराबी, सागर, ये सब जो गीत थे वो मैं आपको सुना सकता था, लेकिन मैंने चुना कि ए टू जेड जितने भी म्यूजिक डायरेक्टर्स थे जिन्होंने कंपोज किया किशोरदा के लिए, उसमें से जितने मुनासिब थे मैंने कलेक्ट किए और 22 से 23 नाम जुड़ गए। अभी के फॉर किशोर कुमार भी आ गया, ए से हमने शुरू किया था, अनिल बिश्वास जी भी थे, फिल्म फरेब का म्यूजिक उन्होंने दिया था और किशोरदा को गवाया था, लेकिन गाने कुछ आई वुड से दे वर दैट ब्राइट, दे वर अ बिट घिसे पिटे यू कुड से। सो मैंने बी से बप्पी लहरी से शुरू किया, फिर चित्रगुप्त, सी रामचंद्र, एच फॉर हृदयनाथ मंगेशकर,

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: Leica Radio. This is Leica Radio across the Midlands.
2: का वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर।
3: हेलो,

0: missed your favourite show on Leica Radio Midlands, you can now listen back at leicaradio.com. It could be breakfast with Kajal, drive with Raj Vadon, to legendary presenters Ravi Sharma, Bali Brambat, or the energetic Radio Wally. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores. Download the app for free and listen to Leica Radio Midlands when you want. Leica Radio Midlands is a part of the number one Asian commercial network. The Leica Group. Home of Leica Radio and Leica Gold.
1: Leica Radio.
2: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
3: OP Nayyar. एक्चुअली गुस्ताखी माफ, मैं ये गाना एंड में आपको सुनाने वाला था लेकिन मैंने अभी सुना दिया. क्यों? क्योंकि रफ़ी साहब और किशोरदा बड़े अच्छे दोस्त थे और रफ़ी साहब वॉज अ बिग फैन ऑफ जीएम दुरानी. तो बीच में ये गाना आया तो मैंने सोचा कि शैल आई प्ले दिस सॉन्ग और शैल आई प्ले अनदर सॉन्ग. तो ओ पी नैयर, अल्फाबेटिकली अगर हम देखें तो ओ पी नैयर का जो ही हैड गॉट किशोरदा टू सिंग फॉर आई थिंक अबाउट 38 सॉन्ग्स. सो आगे जाते हुए मैं उनका गाना ज़रूर मैं पेश करूँगा लेकिन ये गाना एंड में होगा. और अब जो गाना आ रहा है, दिस इज फ्रॉम फिल्म बंदे हाथ, दैट्स आर डी बर्मन. वी आर इन टू ए टू जेड. सो अभी आर पे आते हैं, आर डी बर्मन सुनिएगा.

0: इस गाने में एक गलती हो गई थी, आशा भोसले जी और किशोर दा स्टूडियो में गा रहे थे और वहां पे आशा भोसले जी ने गलत टाइम पे आ ऐसे एंट्री मारी और किशोर दा ने उनके मुंह पे हाथ रख दिया, फिर कहा कि मैं ही हीरो हूँ, मैं हीरोइन को ऐसे ही करूंगा। तो घोड़ा गाड़ी चल रही थी और चांद उस्मानी उनके साथ थी, तो उस उनके मुंह पे रख दिया उसी टाइम पे। सो दैट वॉज ओपी नैयर फॉर किशोर कुमार। नेक्स्ट इज
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Each currency equivalent to one sterling pound, US dollars 1.3449, Indian rupees 127.78, Pakistani rupees 373.31, Afghan Afghanis 88.17, Kenyan shillings 173.98 and Mauritian rupees 63.25.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. This is Leica Radio across the Midlands. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: Gold is currently trading at £97.80 per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116

फिल्म है दिल्ली का ठग एंड म्यूजिक डायरेक्टर रवि. सो आर पे पहुंचे, नेक्स्ट एस पे एस डी बर्मन. लास्ट सॉन्ग कंपोज्ड फॉर किशोर कुमार.

आज मैंने जो गाने आपके सामने आपके समक्ष रखे हैं वो सब ऑल द वंडरफुल चैलेंजिंग एंड सोबर सॉन्ग्स ऑफ किशोर दा, लेकिन ये गाना जो है सलील चौधरी जी के कॉम्पोजिशंस वर सो डिफिकल्ट द वे ही यूज टू कंपोज देम. ये गाना इतना चैलेंजिंग था क्योंकि इसके अंदर स्केल चेंजेस आते हैं. अगर आप वापस कभी भी सुने तो आपको पता चलेगा कि सलील दा यूज टू कीप ऑन चेंजिंग स्केल्स इन बिटवीन द पर्टिकुलर सॉन्ग दैट किशोर दा वॉज सिंगिंग. तो इनको इतनी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा किशोर दा को. ही डिड 18 takes. मैं ये नहीं कह रहा कि किशोर दा ही ओनली वॉज द सिंगर हु कूड हैव टेकन दैट लॉन्ग, बट एनी सिंगर हु सैंग टू दिस कॉम्पोजिशन वुड हैव टेकन लॉन्गर देन नॉर्मल. फिल्म थी अन्नदाता 1972 की और लिरिक्स थी योगेश की और सलील चौधरी जी ने कंपोज किया था ये गाना. हम ए टू जेड म्यूजिक डायरेक्टर्स के गाने सुना रहे हैं हु कंपोज्ड फॉर किशोर दा और सारे सोबर गाने हैं. नेक्स्ट हमारे आर्टिस्ट होंगे, आर्टिस्ट ऑफ द वीक इज बिश्वजीत, जिनके लिए किशोर दा ने गाया था, लेकिन एक चटपटा गाना है ये एंड दैट इज मैं सुंदर हूँ फिल्म का. आशा भोसले जी के साथ किशोर दा ने गाया था, वो भी हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक बिश्वजीत के लिए. उनकी नॉर्मल वॉइस तो हमेशा रफी साहब होती थी, लेकिन कुछ गाने किशोर दा ने भी गाए थे, तो वो मैं सुना.

0: Star Basmati Rice. Available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाएं. फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन.
0: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
2: Visit mantraholidays.co.uk or call 02037736333 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
3: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना.
4: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स.
3: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ.

0: सैंडी शाह जी के साथ बात कर रहा हूँ एंड बिलीव यू मी यू आर गोना हैव द बेस्ट ट्रीट ऑफ योर लाइफ इन द नेक्स्ट थ्री आवर्स व्हाट ही हैज डन फॉर किशोर कुमार चॉइसेस इज एलीट इट्स सो ब्यूटिफुल. अभी नेक्स्ट दो दोस्त रफी साहब और किशोर दा दोनों को एक दूसरे से इतना प्रेम था और रिस्पेक्ट था. लोग बोलते कंपटीशन ऐसा कुछ नहीं था. देखो दोनों की जुगलबंदी एट दी एंड. बाली ब्रह्मर का नमस्कार.
1: चल शुरू हो जा.

0: बस बस बस सा पे रुक गया, आगे बढ़।
1: रे
0: रे के आगे क्या है? अरे वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या गले में तासीर है।
1: ये बात है तो
0: चल वापस आ जा फिर से अपनी जगह पे।

0: Shah Basmati Rice. Available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक है? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं। एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। शुरुआती सैलरी है 39,500 पाउंड, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स। दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स।
2: Mum always said, Beta, clove and neem keep the mouth healthy. Now that same trusted wisdom comes from Baidyanath, over 100 years of Ayurvedic legacy in Siddhayu toothpaste. Fresh breath, strong gums, pure herbal care. Siddhayu, now available in Falcon Cash and Carry, Leicester and Nottingham. Siddhayu, Ayurveda that fits your life.

0: at the Golga Pianda Pani.
1: All Mamster products are nut-free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ आ पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे जहां मड़शे शांति भक्ति अने आनंद अने साथे आईफिल टावर सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलीडेज कॉल करो 02037736333 मंत्रा हॉलीडेज व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा
3: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
4: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs.
5: Borderless World presents Atif Aslam live in concert.
4: Atif Aslam brings his unforgettable sound
5: on Friday, 11 September at the AO Arena, Manchester. Tickets are now available on Ticketmaster.
4: Zembi Productions, supported by Rianne's Music.
5: Official radio partner, Leica Radio, Greater Manchester.
3: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
6: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: सॉन्ग याद है सन सॉन्ग जिसको सुनते ही ना उस सुकून की सांस आप लेते हो एंड जिस पूरे दिन की थकान चली जाती है. आई स्वेयर दिस ट्रैक इज वन ऑफ दोज ट्रैक्स फॉर मी. एवरी टाइम आई हियर इट फ्रॉम द मूवी गॉड एंड गन आई जस्ट टर्न इट अप आई क्लोज माय आईज एंड आई एम ऑलमोस्ट ट्रांसपोर्टेड इनटू अनदर वर्ल्ड आउट ऑफ दिस यूनिवर्स. आई टेल यू द 90s दे जस्ट हिट डिफरेंटली डोंट दे. लॉट्स ऑफ लव गोइंग आउट टू एवरीवन सेंडिंग इन सच प्यार मैसेजेस अबाउट द चॉइसेस tonight, but it's a roller coaster, so let's pick up the pace.
1: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: So again, another artist jo ubhar ubhar ke 90s mein aaya tha aur 2000s pe chha gaya tha. Of course, Sonu Nigam ki hi baat kar rahi ho. This is the OG Bijuriya Bijuriya track. Jinka naya version aaj kal release hua hai. You're never gonna beat the original tracks like this one.

0: the energy and those proper live stage vibes.
1: Hosted by the team of Lyco Radio Network, Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester.
0: An event by 101 Circle in association with Leicester City Council,
1: Arts Council England.
2: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए. दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
3: विजिट मंत्रा हॉलीडेज.
4: रेडियो वाली क्रैकर क्लासिक. नेम द 90s नंबर. दिस इज लाइका.

0: This is Leica Radio. This part of the show is brought to you by 108 Base Hospital Uri. Starts 15th of August every Saturday and Sunday at 7 PM on Colours TV.
1: I hope Major Naina, hum log waqt par pahunche.
2: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
3: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
2: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
3: गारंटेड
2: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
3: फोन 02085748410।
2: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक है? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं। एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। शुरुआती सैलरी है £39,500, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स। दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स।
5: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
6: Visit mantraholidays.co.uk or call 02037736333 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
0: Yeah, like a go.

0: ये है लाइका रेडियो। साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान, देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410। साउथ हॉल ट्रेवल, ऑटो प्रोटेक्टेड।
1: Location, location, location.
2: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
1: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
2: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
1: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 020-393-5757. Greens by Danube. Prime location,
1: high appreciation
2: in Dubai.